गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुरै नमः जुगाद गुरै

0: शुद्ध
1: वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु
1: जी की फतेह। खुशियां जावे निहाल जावे सत श्री।

ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

चेत आवन का सदका सर्व सुख में खालसे जी की देखते फतह चौकी आंचंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे धर्म का जयकार खालसा दी सावे बुलारे खालसे जी नो नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रात रक्षा दान खालसे जी नो श्री हरिमंदर साहिब अमृत सार सरोवर जी दे स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बुलारे श्री अकाल तख्त साहब जी बाबा टल जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर जी कौल सर जी

नील लहु दयाल टह पै द्वारिया रख ले बहु दीन दयाल प्रमत बहुहारिया भगत वशल तीरा बिरद हरिपत उदारिया

बल छुड़ो ब्राह्मण परे पियो कछु ना होते पावे कहो ना रे अब ओट हार गज जो हो सहारे बल हवाए धन छुटे सब किछ होए पावे होतो नानक निज तुमरा हाथ तुम ही होत सहारे सब सिद्ध सब तज करे को नान दे हो सार को दे हो कहानक हे पित महान ते मन रघुना नाम हो साधु रहे हो गुरु गोविंद कहो नानक हे जग जपियो

0: ऐसे चुन प्रताप ते जन बड़े प्रताप तीन लोग जय जय करे रे नाम से जुगुरा सगल द्वार को छाड़ गए गयो द्वार द्वार बाहे गए की लाज अस गोविंद स्वार दोहरा राज करेगा खालसा आके रहना कोई ख्वार हो समलेंगे बचे सुन जो है दोहरा
1: उठ के शमामलिज की करकोड़ा पासार डंका वाले फतेह कान है कलंक अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सोया।

दिस्तु ही न दस्तु ही ब्रिछस्तु ही पतस्तु ही छतस्तु ही और धस्तु ही भजस्तु अंग भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मका तुहि अभू तुहि अभ तुहि अछू तुहि अछ।

त्व प्रसाद पाधड़ी छंद अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छे स्वरूप द्वय नाश अंतुट तेज खुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जिगात करता सदीव हरता सनाद आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम धर्म नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय भंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन शीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमांत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलांत कई सिमृत शास्त्र उचरांत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अग्नहोत्र कई पौनहार कई कर्त कूट मृत को आहार कई कर्त साग पय पत्र भक्ष नहीं तदव देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कही कई कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्नहोत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखर टंत कई देश देश विद्या बडंत कई कर्त भांत भांतन विचार नहीं नयक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्नहोत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदब तास पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्रत उजरत सोगरम न्योली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितर करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देश अनुदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत ऊर्ध लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पं प्रजांत नहीं तदब तास पायत न अंत कई कर्त कूट विद्या विचार नहीं तदब दिष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान वह कर्त होमर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन त्व प्रसाद तोटक छंद जय जम्पह जुगुण जूह जुअंग भय कंपह मेर पयाल भुअंग तप तापस सर्व जलेर धलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभ्यंग अनखंड अभूत अछेद छ्यंग अन काल अपाल दयाल सुअंग जे ठड्यंग मेर आकाश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देव देव वरंग सबकीनी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंडहत ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आव प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जक्ष गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उत भुजंग किये देव देव सराद वितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुजंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग भुवंग जेह जम्पह किन्नर जच्छ जुअंग
नर नारण नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाजर थादिक पांत गणंग भूत भवेख भवान तुअंग जहे अंडज सेतज जेर रजंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली वो मेरा आकाश निवास शितंग रच रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जहे पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत अभूत अछूत मतंगन गाद व्याद अनाद गतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुखंग जय शोक न भोग न जुग जुगंग भो भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कते अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपय सुत सिंध अधोमुख ताप तपय कई कल्पन लो तब ताप करय नहीं नैख कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सफैत जह एक चित्त कृपा निध को जब हे त्यो या भव सागर को तरह भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है त्यो भूल न काल फंधा फस है त्व प्रसाद नराज छंद।

है सदा भेवनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्ध दा, प्रताप पत्र जानी है। नराग रंग रूप है नरूग राग रेख है, अदोग दाग दग है अभूत ब्रह्म वेख है। न तात्मात जात है न पात चिहन वर्ण है, अदेग शेख भेख है सदीव विश्वभरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है, जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है। अद्वेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठौर में विशेख अनु मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण और कुरान नेत नेत के बतावई। न कर्म में न धर्म में न फर्म में बताइए, अगंज आदि देव है कहो सुख सु पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है। न हान है न बान है समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए। न देह है न गेह है न जात है न बात है, न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है, न अंग है न रंग है न संग है न साथ है, न दोख है न दाग है न द्वैख है न देह है। न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है, न मान है न मौत है न साक है न संक है, न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है, न चोर है न साव है न साह को कुमार है। न नेह है न गेह है न देह को बनाव है, न छल है न छिद्र है न छल को मिलाव है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है न रेख है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है, न राग है न रंग है न रूप है न रेख है, न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है। न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है, अभेद है अछेद है अभेद है, न रंग है न रूप है, परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है, अगंज है अभंज है करीम है कुरान है। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है, न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है, न रंग है न रंग है न संग है न साध है, प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है। न शीत है न सोज है न ग्राम है न घाम है, न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है। न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है, न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है, न द्वैख है न भेग है न दुई है न द्रोह है, न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है, अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है। अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेग है बलि अरूप राग रंग है, न द्वैख है न भेग है न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है। बेअंत है अनंत तेज जानिए, अभूम भिज है सदा छिज तेज मानिए, न आद है न व्याध है अगाध रूप लेखिए, अधोग है अदाग है अच्छे प्रताप पेखिए। न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ मोह

आदनाथ अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण। जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार, हस्त कीट विखे बसे सब ठौर मैं निर्धार। जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर विखे रम्यो जेह चक्र चिहन न चित्र। आदि देव उदार मूर्त अगाध नाथ अनंत, आद अंत न जानिए अभिखात देव दुरंत। देव भेव न जानहि जे मरम वेद गतेव, सनक औसन के सनंदन पावहि न सेव। जच किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार, नेत नेत पुकार ही शिव सक्र अमुखचार। सर्व सबत बतार के तर जाप ही जेह जाप, आद देव अगाध दे जनाद मूर्त ताप। जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहो विराज धिराज राज प्रवीण। जच गंधर्व देव दानव न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैष्णंके भिखे विराज सूत्र भी वहनाहे। गूढ़ गौड़ न भीड भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप, रात दिवस न बध उर्द न भूमा काश अनूप। जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन, तीर्थ यात्रण देव पूजा गौर के न अधीन। सर्व सबद पतार के दर जानिए जह जोत, शेष नाम सहंस फन नहीं।

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड भूम काज लेथले मह जपत जाप अमंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार। अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रम मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र।

गाय गाय थपे सके वसम चक्रत भे मुख चार आद अंत न मध जागो भूत भव भवान सत दुआ प्रत्या कल जुग चतर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सभय कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोद सोद थके महासुर पायो नह पार त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल भिद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है।

योगी रागी कवन कहो तत्म है तवन दोहरा। कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ चेत प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम कहाँ

खत्रियान खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रड लाच विहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद्वृते सुर नर प्रतिबारण पतित उदारण दुष्ट निवारण दोख हरे जय जय होसी मखा सुर मर्दन पशु विदुन संसिष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रदर खंड पितल तले अष्टायत वाहन बोलन वाहन संत मनाहन गूढ़ गते जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद अनाद गाध प्रते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गाहे दोख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मखा सुर मर्दन साध वृदन संदुष्ट हंते कारण करी ली गर्व कही ली।

ज्योत जति ली तुंद मते अष्टायध चमकण सहस्र झमकण दामिन दमकण आदवृते डुकडुकी दमंगे बाघ बबंगे भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय होसी मखासुर मर्दन आदि जुगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पतित उधारे मुंड मथे जय जय होसी मखासुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्रदन दान वर्दन बिड़ाल वधे सरदार विवरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धनम धुजे धूमराज विधुन संसुंड सुंभ न

चौपाई को कह चौपाई सम सतरह सहस बणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुधि अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा

आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्रीअस पान कृपा तुम रिकर मैना कहो सब तोहे बखान्य दो।